पटना नदी का विधिक पार्टी प्रतिनिधि सभा में पठाइक प्रतिनिधि सभा में विचाराधीन विधि को संख्या आठ होते एवं मित्री सभा में संसदीय समिति में समिति में आ रहा सात विधेयक

0: Exacto, sí,
1: मेरा एक पक्षी बात करते हैं, बहुत आवश्यक दिन हमारा आज धन्यवाद।

0: பாதிப்பாக வருவதாகி புத்தகர்கள் திடீர்னு மாற்றம் வந்தீங்கன்னா சிவதிகள் மாற்றம் வந்தீங்கன்னா சிந்தாரி சோழன் வையதிகி பராக்குள் கார்த்திகை சரி அழைப்போம் பழைய அறிவு வாய்ப்போம் சொல்லி
1: சங்கை கவிதாக்கிறேன் வாசல் கருந்த
0: बाल्यकालदेखि नै भगवानको आस्था र विश्वास गरिहाल्ने मान्छे र उनलाई गाउँमा सबै राम्रो मान्छे हुन् पवित्र विचार थापामा सबैको राम्रो होस् भन्ने धारणा लिएर आइयो र त्यस समयमा मैले बाल्यकालदेखि नै कविता लेख्ने केही चिजहरू

sekarang disebutnya Yesus. Malah sumber ini, ia malah tidak jago. Sok malah malah tu, ia malah tidak disebut kesilap malah. Sok kejaran usaha malah. Misalnya kalau korang malah, tapi terbicara ni, tapi terbicara ni main malah sok ini, jadi sok ini sangat tinggal. Contohnya seperti sitar malah. अपने जस्ते पदस्थ बना सबे को आगा को नाई बना रुखले दुन जस्तो छाया बना ये मानव तिमी जागो सब लागो मनागो ये मानव तिमीले सबे को सेवा गर पवित्र मूल्य माया गर सबे सँग प्रेम गर सूर्य जस्तो उज्यालो थियो सूर्यले जस्तै उज्यालो थियो अन्धकार सबै हटाऊ नयाँ संसार जगाऊ आशाको दिन जगाऊ पवित्र अनुले विचार बनाओ ये मानव तिमी जागो सब मार्ग मनागो ये मानव तिमीले सबै खुसी गर पवित्र मनले माया गर सबैलाई प्रेम गर सत्यको मार्गमा चिनेर धर्म संस्कारलाई र कर्मलाई दिएर निजी स्वार्थलाई त्यागेर दुखीको सहारा बनेर हरेक प्राणीको सेवा गर

0: नमस्कार मेरा भाई जी, हमने आपने सहारा मांगा
1: की समस्या
0: का गाँव से धान के चावल हो के मर था वह समस्या का आया था भाई की मैं समस्या बोले
1: धान को खेत खुले रोप सुरुमा चाहिँ बिरुवाको खेतमा चाहिँ छैन खेत खायो है।

0: 1900 Spanish guy, so I should see who you are.
1: Radio Kubata FM Dwara, Chalachitra Jari Sandesh.
2: आपकी भाषा आपने समावेशी रेडियो को साझा आवाज़।

स्वास्थ्य प्रशासन संचार मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपाल का साथै द्वितीय पूर्वाधार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदलीय अनुसन्धान केन्द्र संगठन सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ

सौ तीस हजार रूपया सिक्यासी लाख इस क्लास को नगर पालिका का विभिन्न अपराधों भाई की इसके विकास कार्यक्रम की सक्षम और प्राधिकरण का नगर गठन भाई वर्तमान का सक्षम और जनता की

संध्या पर अतिरिक्त गुणवत्ता मौसम बुलेटिन में स्वागत वैंकिंग चौधरी

कर्मों में वाणी व्यवहार नजर आएंगे तो उस सप्तम सौतेले को भी एक दिन के बाद तो कठिन होने पहले जमाने पर छोटा छोटा भैया भैया भारत के तो पटवैया पेड़ों को पटवैया पटवैया दो दिन के पटवैया तीन चार दिन के दर्शन करने के और बिना तो वो सबके उसके मुकेले देना और वे नहीं पिला कि आज यहाँ मैं अपन धारों खाए थे तो आज ले लेते हैं वहाँ मैं कहना कि तो सर प्यार कर दी तो मजा के रात रहेगी तो अपन मैं जन्म के अंदर जाए अपन जन्म में मजा मत थे अपन पुरुष बने या और क्या मैं श्रीमान धारों मने जाए अपन जाए मजा मत थे ये तो कहीं एकदम बात दिखा मैं तो थे मैं ऐसे तो भी अपनाए के ना होता था कि धारों मन मैं जाए अपन फिर अपन जाए अपन वो अपन जन्म के अंदर जाए अपन फिर अपन कहाँ करेगी लड़की की ये उत्तीर्ण आया तो अपन जन्म के अंदर जाए अपन छोड़ के कर्म कर तो ते बन जाते तो मैं वो एकदम आराम ही रहो वो मैं कि और ते मैंने सोचा कि मैं एकदम रेटी मैं देती हूँ वो उसे मैं बार बार करते हूँ तो मैं ही रहो अब तो मैं वो जल्दी मैंने सोचा सोची ही हूँ पाँव उठा के लगा तो हाँ कि नहीं जमाने में तो कहते हो छोटू माँ भैया भैया तब आप हाँ नहीं तो मैंने पढ़ लिया तब मैंने

कि ऐसी एक काम पूरा नहीं जाता कि जब यहाँ पे कहीं जाता मरने के लिए मैं सीधा पता न हुआ कि थरो मने जो छुट्टी लगा के बंगला छाट के एकदम कचरा गाड़ी लगा के जनी मन के मन स्त्री पर भर के कुली मारे गाड़ी कचरा लगा के एक से पहचान पहले के मने देखी ताकि वहाँ जाके पति उठाए मने माटी के पति उनके मने सारा लुकड़ा मने निकाल के तब मने मुक्ता मने आरोप कर को वहाँ से नंगई कहीना नंगई कहीना तो मने अवे की ही रहना है कहीना कातर की सबके पर बीती नकें तो कि आज तो मने तेवाली आखिर के तेवाली खात मने खात अंगी पर आई धरियत मुंह पर धाम धरी अंगी पर आई पीती

था, पर फिर चाकू की कहीं के जाए हमारे घर घर पे बैठ गया या कल ला के लगी पकड़ पकड़ के मैंने टूटा दिया कि यहाँ के खड़ा मैंने घर के पाया मैंने टूटे काट गए

बाढ़ जाती है उठा कर खाई थी हाथ में बाढ़ भी लगे थे टूटे थे मरे जाते हैं वो दूसरे जगह पकड़े गए किसी के प्यार के लिए हमसे नहीं करने पड़ते थे हफ्ते के लिए

0: साझा सवा छ बजे हमार संदेश में अपना हाँ स्वागत बा सिमरिया बिंदु संगम एफएम पर दिया से उत्पादित हमार संदेश पर दिया का साथ ही एफएम राजापुर पवे एफएम करिया बाकी का रेडियो तत्पोत एफएम कोलपुर रेडियो अपने मानो जानकी का उत्पादित बाकी में से कसम प्रसारण पीटिका हमार संदेश का अधिकारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक से बांसवाड़ी नगर अस्पताल में सावन चौदह के नाथान तथा ख्यातारोना सरकारी सिलसिला पर बारह बोटिया में काम करना का नगद कार्यक्रम बोटिया में भुक्ता का संख्या घटल खजुरा कैंसर अस्पताल का स्वास्थ्य उपकरण मरम्मत व अदालत का लाइव स्ट्रीम तत्काल खुला था सर्वोच्च का अंतरिम आदेश
1: अस्पताल में लैब काम तथा ख्यातार रोग संबंधी विशेषज्ञ परामर्श तथा उपचार सेवा संचालन बांसवाड़ी नगर अस्पताल का आयोजना बांसवाड़ी नगर पालिका को समन्वय तथा नेपाल अस्पताली कल्पना स्वीटन अस्पताल कोलपुर बाकी को प्राथमिक सहयोग में सावन चौदह बजे विशेषज्ञ क्लिनिक संचालन गर्दै नगर अस्पताल बांसवाड़ी स्वास्थ्य अधिकारी हरिहर तिवारी के अनुसार लैबकालीन तथा ख्याता संबंधी समस्या विगत नगर विधायक ग्रामीण नगर अस्पताल मध्य सहज सुलभ रूप में विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध कराने उद्देश्य ने सेवा संचालन गर्दै आयोजक अनुसार विशेषज्ञ परामर्श तथा उपचार क्लिनिक व्यवसायिक बिहान 9 बजे से दिन का 1 बजे से नगर अस्पताल बांसवाड़ी में संचालन होने वाला नाकांड तथा क्षमता संबंधी गर्भवती समस्या मूलक बांसवाड़ी नगरवासियों का सभी नगर अस्पताल में उपस्थित होकर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं देखा फिर खर्च करेगा संघ बांसवाड़ी नगर अस्पताल में वीडियो सेवा और लैब सेवा संचालन में तरफ स्वास्थ्य शाखा का जनस्वास्थ्य निश्चित और चौधरी

आसपास अच्छे तरह का स्थान है। खासकर किसान साथ पूर्ण करना प्रकार संख्या आवश्यकता के बारे में महसूल होगा। पर्व राष्ट्रीय निकुंज में हरेक वर्ष जुलाई 29 तारीख दिन हरेक विश्व गुफा दिवसीय वर्ष के मना के बाद सुरक्षित सुरक्षित कनेक्शन को जैविक विक्रेता को उपयोग समृद्धि सेतु कला मुंडा सहित विश्व गुफा दिवस 2083 मना के बाद बरसात का समय में चरण सर्दी खोखी

तरीका से सब कुछ हम सब के नजर इस समय में अस्पताल स्वास्थ्य चौकी हो स्थानीय मेडिकल में चार साथी को ठीक टाइफाइड और छाड़ संबंधी जीवन का संख्या बढ़ती होगा पास होने पर अस्पताल में दैनिक 27-80 जना पीड़ा महीना चल पाता असीम स्वास्थ्य समस्या उसे कसी का प्रशासनिक जाएगा मास को लेने का अस्पताल का जनस्वास्थ्य परिचय बहादुर चौधरी से दूसरा पार्टी।

सुशील कोरोना प्रखर कैंसर अस्पताल खजुरामा लम्बा समय से दीवार पर थन्का गया दर्जन ख्याल आवश्यक उपकरण राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र का प्राप्ति बाद अस्पताल में लम्बा समय से दीवार पर थन्का गया आवश्यक उपकरण शाम पैला राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र में कैंसर अस्पताल खजुरा विस्तार छोटा गया अस्पताल का निर्देशक डॉक्टर नीरज पटेल समझौता पीटी के राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र का बायोमेडिकल इंजीनियर प्राथमिक टोली अस्पताल में आकर एक अखबार बैठक लंबा समय से बिगड़ कर अलग उपकरण में प्रश्नभार महामर्मत संभार व्यक्तिगत उपकरण कैंसर संबंधी रोग परीक्षण तथा निर्वाह करना वैज्ञानिक मशीन तथा उपकरण अलग उपकरण मर्मत संभाग का केन्द्र से संचालन में रखा त्रिवेणु प्रसाद अस्पताल जो राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र का बायो मेडिकल टीम लीडर इंजीनियर उन्हें किराप अस्पताल से केन्द्र का समझौता में पहुंचे तत्काल खनन समय से विगत अस्पताल में विगलत अस्पताल पर बेहतर उपकरण मरम्मत संभाग का अलग समय के बाद वहां अनुसार मरम्मत संभाग परिचालक उपकरण में एक्सरे मशीन डेटो अल्ट्रासाउंड मशीन डेटो वेंटिलेटर 3 करोड़

0: समय अनवीर था बारह से रिटायर करना इंजीनियर किया बकरी वहां का लगाया अस्पताल में भी लगातार नियम का पके और संतान समस्या पर मार्ग आया आप राष्ट्रीय समस्या कर पाए किंतु से
1: उच्च मुकामों को होना सुनवाई को प्रत्यक्ष प्रसारण भारतीय स्ट्रीमिंग तत्काल निकला अंतरिम आदेश के द्वारा न्यायाधीश प्रीमिंग शर्मा और शांति सिंह ठाकुर का संयुक्त इजलास से मामला उन्मुख आवश्यक नीति निर्देशिकाओं को मापदंड निर्वाचन प्रत्यक्ष लाइव लाकर आदेश के लक्ष्य समूह प्रसारण कई वीडियो अफवाह फैलाने गतिविधि निकालते निर्देश के द्वारा विशेष अदालत ने उच्च अदालत जनकपुर स्वरूप पर लग लाइव स्ट्रीमिंग अभ्यास विरुद्ध बनाएर रेडियो पर सुनाई का जल सर्वोच्च वो अंतरिम आदेश जारी कर रखा हो
0: राष्ट्रीय समाचार सुन्दा हमारा संदेश का समय बढ़ाई लग रहा था हमारा संदेश बढ़ना से पहला मुख्यमंत्री संदेश जी द्वारा वाजपेयी नगर अस्पताल में काम शुरू कर रहे थे मतदान तथा खिलासार रूप संबंधी विशेषज्ञ परामर्श तथा प्रसार सेवा संचालन को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई में प्रत्यक्ष प्रसारण लाइव स्ट्रीम तत्काल निकल अंतरिम आदेश दिलवा अब हमारा संदेश पत्र में काल बिहार 7 बजे नेपाली भाषा समाज स्वदेश लिखाई बाटी समाज समाचार कक्ष का सबको सहयोग प्रारंभिक सुंद्रिया कमीशन का कैमरा मार्मिक संग सुंद्रिया बिल्डिंग कुमार के विधायक रेडियो प्रणाली सुंदर जय।

आदमी बुनियादी प्रति समूह को प्रत्येक सदस्य को नागरिकता को प्रदान करने को प्रतिनिधि होने वाले उनकी तारीफ समूह कठोर को निर्णय सहित तीन पदक संगठन मासिक बैठक तथा दूसरों के प्रति प्रतिनिधि वार्षिक कार्य संचालन समय को सदस्य को फोटो भाषण नगर पालिका एवं कार्यपालिका को कार्यालय भाषण कर दिया।

संसदन रेखी कारण बनाने के लिए सरकार ने प्रस्तुत प्रधान नियंत्रण संबंधों का व्यवस्था

0: sama cukup mampir kalau dia berusaha pada kesucian dan juga semuanya.
1: Baik, pada eksklusif dan network yang ini katakan kepada data itu saat-saat terus menyebabkan Microsoft, saat-saat kemudian berapa lagi kemarin. Fokusnya mungkin mesti teman pada matanya semua saat terkata untuk kesungguhan tetap si perusahaan luar terkata antara yang ada sejari Microsoft. Yang ia di sebegitu server SMP sudah takut berjalan ke satu perbalat kemudian yang register terlambat di sekolah tersebut. Apakah saya lakukan ini bukan ini laporkan yang mudah dan berjalan ke mesti mudah tak popular. Kami diusahai untuk perusahaan modal yang berat dari kamera, tetapi dalam perusahaan terlebih kepada modal oleh kamera tersebut, tetapi perusahaan modal terlebih. युवा संस्थान रोजगार मंत्रालय सार्वजनिक कार्य को युवा संबंधीकरण संशोधन तथा एकीकरण विधेयक को मसौदा प्रति सरकार द्वारा आपत्ति जनाया छ। राष्ट्रीय युवा परिषद गठन गरी राष्ट्रीय युवा परिषदलाई राष्ट्रीय युवा विभाग गठन गरी राष्ट्रीय युवा परिषदलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेताले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा

0: 这么大的，为什么这么深这么大的山？这个冰山你到那感觉，所以呢就在
1: 你。你好，你好，阿不是你父亲是哪里人家？他的儿子是哪里人家？他是你哥，他是你哥，他是他们做的家大的，第三行的上面的来的朋友，啊，这个辛苦，你说你们是哪里人家？阿不是他亲戚的，第阿是我们。हम लोग समझे कि जो ये भी करते हैं तो बस अपने समझे कि जैसे लगे करते हैं लाखी छुट्टी उठा रहा हूँ तो बस समझे ये तो करे अपने छुट्टी नहीं ला सकते ये तो यार अच्छा सावन समझे बस तो ना
2: छुट्टी में छुट्टी में सीधा समझे ये जैसे लगे करते हैं तो तब आप इधर तो लोग समझे इसकी
1: छुट्टी हो सकती है और
0: Thank you.

0: रूस पूरा समाचार
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुसार नेपाल में 30% वयस्क जनसंख्या उच्च रक्तचाप को जोखिम में प्रस्तुति तथा तैयारी खाना जंक फूड तथा डिब्बा के खाना में सोडियम धीरे होने हुआ मृत्यु रोग को जोखिम बढ़ाने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एवटा व्यक्ति ने दैनिक 5 ग्राम समय नून सेवन कर उपयुक्त होने सलाह
0: दियामित रूप में हेतु और शारीरिक व्यायाम ने मृत्यु स्वास्थ्य बनाने मदद
1: संतुलित भोजन पर्याप्त निंद्रा सकारात्मक सोच एवं चिंता

नीति का मतदाता कार्यक्रम का चयन थी। कैबिनेट पेट कमी कमेटी का नमस्कार उन्हें वर्तमान सदुक है और ये हमारा माता उन्हीं से जो मेरा नाम संबंध था मना सकते न कर हमारे साथ ही उन्हें छोड़ कर माना जन्म नहीं करते ये बड़ा ही है इसको इसको ना जानते यदि वाला काला जाती है एक तो इस बात को पहली रूप में प्रसिद्ध भोजन को मुखर पर आता है तो बड़ा ही तरह हमें धारण करें और ये हमारी सारी दुनिया को बारे में

ब्रिटिश को सहायता कराई महत्वपूर्ण थी। उनको अंग्रेजी उच्चारण में एक वस्त्र वस्त्र विहीन थे, तरह उन्हें यूरोप को स्वतंत्रता को लेकर बिल्कुल

हमेशा जीवन में आने का उपयासा भूमिका को देखती थी। ये महीना आपकी राजधानी हो जाए जिससे समय काम करना व्यवस्था कर दिया जिंदगी को बुला ली उन्हें राजधानी काम में चिंतित थी। खाली प्रार्थन मध्य सम्माननीय पैसा वाला पोस्ट थी उन्हें मेरे पर सेवा दी जिसने उनको गाय बने जानकारी दी ईश्वरी बाबू ने तीनों का एक बारे में

नहीं की थी। अगर हम चढ़ाई नहीं कर रहा हूँ उसको पता नहीं है पूछना नहीं पड़ते और भी मंदिर या रोटी या सबका कारण सबसे बड़ी व्यवस्था करेंगे तो खाना खाने और भी बात चाहे घर में खाना खाना बहुत ज्यादा खुशी होती है जब रात मैंने खाए तो मिलती है तब सब वर्ष बहुत बड़ी होती मुझे खाना को जानती एक प्रतिशत व्यवस्था बहुत बड़ी होती है। जिंदा मैंने मेरे दिन देखा इन्हीं सब उन्हें